सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 प्रातः के 5:59 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में सुनिए हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में

0: की गई जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर एक कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं ज्ञान ज्योति। जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी यहां मन चाहा होता है तो कभी अनचाहा होता है। कभी हमारे अपने हमें सुख देते हैं तो कभी दुख। ये जीवन आसक्तियों का मेला है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि संसार के सरोवर में कमल की तरह यूं ही खिले रहें एवं खुश रहें तथा हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहें।

प्रेरणा वो शक्ति है जो रोगी को निरोग करे, निर्धन को धनवान बनाए, जो पीछे रह गया उसे आगे का मार्ग दिखाए और डरे हुए को निडर बनाए।

परमात्मा कहते हैं कि कम योग्यता होने के बावजूद अगर मनुष्य के भीतर निरंतर प्रेरणा की अग्नि जल रही है तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और ए हरिहरन। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:50 हुए हैं। अब सुनिए आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर सुनिए संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर का। 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकेंगे। प्रातः 8:30 का समय रहेगा हिमाचल डायरी का। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी शिमला से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 10 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता। 10:15 का समय रहेगा महफिल कव्वाली कार्यक्रम का। 10:45 पर लोकरंग प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दोपहर 12 वनिता मंडल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दोपहर 2 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित रिले किए जाएंगे। 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 3 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 3:10 पर आप सुन सकेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 सुनिएगा हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 5:05 पर सुनिएगा भजन संध्या कार्यक्रम। युवाओं का कार्यक्रम युवमंच लेकर हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:00। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का। शाम 5:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम रौनकां गराएं दियां। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी शिमला से। रात्रि 8 विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे। 10:30 का समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातों का। रात्रि 11 सुनिएगा हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। तो ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में सुनिए संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: रक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट्स्तोपकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातु

0: कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत के वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:05। अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।
2: हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: Affiliated to HP University,
2: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हुआ है 7:06। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: जी सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अस्मिता। जी हाँ श्रोताओं, देर न करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत से विचार के साथ। तो आज का विचार कुछ इस तरह है कि देखिए, इंसान ही दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसे हंसने का गुण ईश्वर ने दिया है। जी हाँ, देखिए हमें खुद को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए कि हमें परमात्मा ने ऐसे गुण से नवाजा है जिसमें हम अपनी खुशी को हंसकर जाहिर कर सकते हैं। हंसने से हर परेशानी खत्म हो जाती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उन परेशानियों को सहने की हमें शक्ति आ जाती है। हंसने से कोई दुख बड़ा नहीं लगता। जिंदगी में सुख दुख तो श्रोताओं लगे ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन दुखों के चलते मुस्कुराना हंसना ही छोड़ दें, बल्कि मुस्कुराने से तो कई सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो यूं ही खुश रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर। तो ये था आज का विचार और अब कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर।
1: नजर वो जो दुश्मन

0: जी श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। गुड मॉर्निंग हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये अंतराल।
1: वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
5: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
4: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
5: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका श्रोताओं, और अब बात करेंगे आज के इतिहास की। सबसे पहले बात करेंगे 1811 की, तो पैराग्वे ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी आज ही के दिन। 1905 में अमेरिका के नवाडा में लास वेगास की स्थापना हुई थी। 1918 में अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा का शुरुआत हुई थी। 1930 में दुनिया की पहली एयर हॉस्टेस एलन चर्च ने ऑकलैंड शिकागो फ्लाइट में उड़ान भरी थी। 1925 में पहला अरेबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था। और 1935 की बात करें तो मॉस्को मेट्रो को लोगों के लिए खोला गया था आज ही के दिन। और 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने एसेक्स के खिलाफ क्रिकेट मैच में एक दिन में 721 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। की बात करें तो सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 लॉन्च किया था। सोवियत राष्ट्र ने 15 मई को यानी आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, और यह हुआ था 1993 में। 1995 में चीन ने लोप नोर PRC में परमाणु परीक्षण किया था। 1995 में एलिसन गार्बेज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। और 1999 में कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदत्त हुआ था आज ही के दिन। 2001 में इटली में दक्षिणपंथीय गठबंधन को बहुमत मिला था।2004 की बात करें तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक भी मैच हारे बिना चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनी थी। 2005 में 20 साल बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था। अब बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की, तो महान शहीद क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1907 में। और 1923 में भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ था, और 1967 में भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन हुए निधन की अगर बात की जाए तो 1958 में प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का निधन हुआ था आज ही के दिन। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास, और अब एक और खूबसूरत सा गीत आपका कर रहा है इंतजार, तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और जैसा कि श्रोताओं, आज हमने इतिहास पे बात की कि आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो थोड़ी सी बात उसके बारे में। श्रोता, एक बेहद खास दिन है जिसका संबंध हम सभी के जीवन से जुड़ा है, और वो खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हर वर्ष 15 मई को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी और 1994 में इसे पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इस दिन का उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक करना और परिवारों से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। परिवार हमारे जीवन की सबसे पहली पाठशाला होती है। यहीं से हमें प्यार, संस्कार, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की सीख मिलती है। एक मजबूत परिवार व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है और हर कठिन परिस्थिति में सहारा बनता है। बच्चे अपने परिवार से ही अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्य सीखते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम और तकनीक में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ समय बिताना कम होता जा रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने जहां दुनिया को करीब लाया है, वहीं कई बार परिवारों के बीच दूरियां भी बढ़ाई हैं। ऐसे समय में ये दिवस हमें याद दिलाता है कि परिवार के साथ संवाद, प्रेम और अपनापन बनाए रखना कितना जरूरी है। श्रोताओं, अब बात करते हैं वर्ष 2026 की थीम की, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम है परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। इस थीम का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि समाज में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बच्चों और परिवारों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान और समान अवसर मिले, ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। श्रोताओं, परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं है, बल्कि भावनाओं का मजबूत बंधन है। जब परिवार साथ होता है तो जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। इसलिए हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने परिवार को समय देंगे, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे और एक खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो श्रोताओं, ये हमने आपके साथ जानकारी साझा की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में।

जी श्रोताओं, सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पे। अब रुख करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। सबसे पहली खबर की बात करें तो पश्चिमी एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का असर महंगाई पर ज्यादा दिखने लगा है। ईंधन, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम व एलपीजी की कीमतों में तेज उछाल से थोक महंगाई अप्रैल 2026 में बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। थोक मूल्य सूचनांक पर आधारित महंगाई एक महीने में दोगुना और एक साल में 7% से अधिक बढ़ी है। मार्च 2026 में ये 3.88% और अप्रैल 2025 में 0.85% रही। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि ने ईंधन आयात को महंगा बना दिया है। इससे धातुओं, रसायन और वस्त्रों की विनिर्माण लागत बढ़ गई है, जिससे मुख्य थोक महंगाई को एक साल में 5% बढ़ा दिया गया है। खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर बीते महीने मामूली बढ़कर 1.98% पहुंच गई है, जो मार्च में 1.90% थी। वहीं पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भी तेज उछाल ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। लगातार कमजोर होते रुपए के बीच अब थोक महंगाई भी अप्रैल में बढ़कर 42 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने में ईंधन, बिजली, पेट्रोलियम और रसोई गैस की ऊंची कीमतों की बड़ी भूमिका रही है। बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर बढ़कर 24.71% के स्तर पर पहुंच गई, जो 42 माह में सबसे ज्यादा है। कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई भी बढ़कर 4.5 साल के उच्चतम स्तर 88.06% पर पहुंच गई है। इससे पहले कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई सबसे ज्यादा अक्टूबर 2021 में रही थी। बिजली ईंधन श्रेणी में एलपीजी की महंगाई भी एक महीने में तेजी से बढ़कर अप्रैल में 10.92% पहुंच गई। मार्च में यह 0.1 से 1.54% नीचे रही थी। पेट्रोलियम की महंगाई दर 32.40 जो मार्च 2.50% थी। डीजल की महंगाई 3.26% से बढ़कर 25.19% रही है। वहीं घरेलू वाहन उद्योग ने नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। अप्रैल 2026 में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 25.4% इकाई पर पहुंच गई है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,48,847 इकाई था। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग बढ़ने और यूटिलिटी गाड़ियों के प्रति बढ़ते आकर्षण ने बाजार को मजबूत सहारा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 250 वाट से अधिक पावर वाले ई पहिया वाहनों की बिक्री 1,12,676 इकाई पहुंच गई है, जो सालाना आधार पर 58% वृद्धि है। दोपहिया वाहनों की बिक्री अप्रैल में 28.4% बढ़कर 18.72 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। तिपहिया वाहनों में बिक्री में 32.8% की तेजी दर्ज की गई है। अब भारत अब यूरोपीय संघ के बाजारों में समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात जारी रख सकेगा। यूरोपीय संघ ने संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल कर लिया है। भारत अभी तक सितंबर 2026 से मानव उपभोग के लिए पशु मूल के उत्पादों के निर्यात की अनुमति वाले देशों की सूची में नहीं

था। असल में भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि यूरोपीय संघ को भेजे जा रहे पशु और उनके उत्पाद रोगाणुरोधी औषधियां उत्पादों एवं मानव चिकित्सा के लिए संरक्षित रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग से मुक्त है। इसके बाद यूरोपीय संघ ने यह संशोधित मसौदा सूची जारी की। संशोधित सूची में सिर्फ उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने खाद्य उत्पादन में उपयोग होने वाले जानवरों पर रोगाणुरोधी उपयोग का यूरोपीय प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया है। इन देशों ने यूरोपीय संघ के नियमों के तहत आवश्यक गारंटी और भरोसेमंद आश्वासन भी प्रदान किए हैं। यूरोपीय संघ भारतीय समुद्र का निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक है। 2025-26 में यह भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें कुल निर्यात मूल्य 1.593 अरब डॉलर दर्ज किया गया है।

वहीं अगली खबर की बात की जाए तो CBSE द्वारा 13 मई को जारी 12वीं के नतीजों ने इस बार नई बहस छेड़ दी है। बोर्ड ने पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए करीब 98 लाख कॉपियों की डिजिटल जांच कराई। हालांकि बोर्ड इसे पारदर्शी और त्रुटिहीन बता रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा साइंस के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। साइंस के मुख्य विषयों में 100 नंबर पाने वाले अपेक्षाकृत कम रहे। मैथ में 1283, केमिस्ट्री में 1061 और फिजिक्स में 96 छात्र ही 100 नंबर पर पा सके हैं, जबकि 800 स्किल कॉमर्स आधारित विषयों में ऐसे छात्र ज्यादा रहे। पेंटिंग में 15,334, साइकोलॉजी में 2,533, एआई में 3,326 ने 100 नंबर हासिल किए। आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 12वीं बोर्ड में कम से कम 75 अंक लाना अनिवार्य है, या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में पास होना जरूरी है। इस बार डिजिटल चेकिंग और सख्त स्टेप मार्किंग के कारण बड़ी संख्या में छात्र इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हैरानी की बात यह है कि कई छात्रों ने जेईई मेन और एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं में 80 से 99 परसेंटाइल तक हासिल किए हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में उनके अंक 75% से कम रह गए। अच्छे जेईई स्कोर के बावजूद बोर्ड की पात्रता पूरी ना होने से कई मेधावी छात्र काउंसलिंग व एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। शिक्षा वैज्ञानिकों विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की कट ऑफ और सीट आवंटन पर भी दिखाई दे सकता है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन खबरें।

नाचती है दुनिया, खुशी का है असर। लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, अब होगी सुहानी।

श्रोताओं, आप बात करते हैं आज के कुछ ताज़ा तरीन खेल खबरों की। तो सबसे पहली खबर है, भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा ने मकाऊ में चल रहे 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं की 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अपर्णा ने फाइनल में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन थाई फुओन गो को सीधे सेटों में हराकर स्वर्ण जीता। यह इस इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सितंबर 2025 में ब्राजील में हुए विश्व वुशु चैंपियनशिप में फाइनल में अपर्णा को इसी खिलाड़ी से हार मिली थी। इस बार उन्होंने अपना बदला पूरा किया है। वहीं लंदन में 26 से 30 मई तक होने वाली यूनिटी कप के लिए 28 सदस्यीय प्रारंभिक टीम घोषित कर दी है। टीम में 4 गोलकीपर और 8 फॉरवर्ड शामिल हैं। अनिरुद्ध थापा और सुहेल भट्ट को टीम में जगह मिली है। टीम इंडियन सुपर लीग के समापन के बाद बेंगलुरु में छोटा शिविर करेंगे और 24 मई को लंदन रवाना होंगे। टूर्नामेंट में भारत के अलावा नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और जमैका की टीमें भी भाग लेंगी। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीते। अंडर 15 लड़कियों में भारत ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य जीते। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो भारतीय शटलरों का थाईलैंड ओपन में प्रदर्शन जारी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मात्र 28 मिनट में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। वहीं 7वीं वरीय लक्ष्य सेन ने चीन के झू शुआन चेन को 39 मिनट में हराया। सिंधु अब विश्व चैंपियनशिप जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी, जबकि लक्ष्य का सामना थाईलैंड के दूसरे वरीय कुनलावुत विटिरदर्सन से होगा। अगली खबर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 19 में 2 लगातार मैच में 0 पर आउट होने के बाद कमाल कर दिया है। कोहली ने बुधवार को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जोरदार शतक लगाया। साथ ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आईपीएल इतिहास में इससे पहले कभी नहीं बना था। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर भी टी20 क्रिकेट में ये कारनामा चंद ही लोग कर पाए हैं।

वहीं अगली खबर की बात की जाए तो भारतीय वेट लिफ्टर अजित नारायण ने एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम श्रेणी में 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। टूर्नामेंट में उन्होंने क्लीन एंड जर्क और ओवरऑल दोनों में जगह 3रा स्थान हासिल किया है। अजित ने क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम का सफल प्रयास किया, वहीं कुल 314 किलो वजन उठाकर पदक पर कब्जा किया। कोरिया के वान जू री ने 351 किलो वजन स्वर्ण और चीन के जियान चेन ने 335 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ ताज़ातरीन खेल खबरें।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब बात करेंगे विज्ञान चर्चा की। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम विज्ञान से जुड़ी कई बात आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए, बाल झड़ना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। दुनिया की लगभग 40% आबादी किसी न किसी रूप में हेरिडिटरी पैटर्न बाल्डनेस यानी अनुवांशिक गंजेपन से प्रभावित होती है। ये समस्या सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी पाई जाती है, खासकर मेनोपॉज के बाद। आमतौर पर हर व्यक्ति रोजाना करीब 100 बाल खो देता है, लेकिन इस समस्या से जूझ रहे लोगों में बालों का झड़ना कहीं ज्यादा होता है और समय के साथ सिर के कुछ हिस्सों में गंजापन भी दिखने लगता है। अब तक ये माना जाता था कि गंजेपन का संबंध केवल माँ की तरफ से मिलने वाले जीन से होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी तरह सही नहीं है। ये समस्या माँ और पिता दोनों से मिलने वाले जेनेटिक फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह चौंकाने वाली बात पता चली है। 2024 में फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित स्टडी में अनुसार शरीर में पाया जाने वाला एक खास प्रकार का शुगर जिसे डीऑक्सीराइबोज बालों की ग्रोथ में मदद कर सकता है। ये वही शुगर है जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनती है और डीएनए की संरचना और रिप्लिकेशन में अहम भूमिका निभाती है। ये डीएनए के बैकबोन का हिस्सा होती है और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। यह अध्ययन शुरुआत में बालों के लिए नहीं किया गया था। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यह शुगर घाव भरने में मदद कर सकती है। प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि जिन चूहों पर यह शुगर इस्तेमाल की गई थी, उनके घाव के आसपास बाल तेजी से उगने लगे हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने और परीक्षण किए। उन्होंने चूहों में टेस्टोस्टेरॉन आधारित बाल झड़ने की स्थिति बनाई, जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन जैसा होता है। वहां भी पाया गया कि यह शुगर छोटे छोटे डोज में देने पर नए खून की नलियां बनाने में मदद करती है, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। शुरुआती परिणामों के अनुसार यह शुगर मिनोक्सिडिल जितना असरदार हो सकता है, जो हेयर लॉस का सबसे आम ट्रीटमेंट है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह शुगर बहुत सस्ती, प्राकृतिक और स्थिर है। इसे अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जिससे यह भविष्य में एक आसान इलाज बन सकता है। तो श्रोताओं, ये तो हमने बात की विज्ञान से जुड़ी हुई की, जिससे हमारे बाल झड़ने की समस्या में काफी सुधार आ जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं खूबसूरत से गीतों के साथ आज का ये सुप्रभात हमीरपुर का कार्यक्रम भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो लेते हैं आपसे इजाजत और एक बार फिर से कहते हैं सुप्र

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाओ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही।

0: शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी

0: ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:30। अब सुनिए हिमाचल डायरी का आज का अंक।

हिमाचल डायरी के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली खबर की बात करें तो चटक धूप के साथ तपिश दे रहे आसमान में मौसम के तेवर हिमाचल प्रदेश में आगामी दो दिनों में फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने आज व कल फिर से प्रदेश के 5 जिलों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच वीरवार को भी प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि व तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। राज्य भर में दिन भर अच्छी खिली धूप खिली रही, इससे तापमान में हल्का उछाल भी दर्ज किया गया है। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में छुट्टियों को लेकर चल रही ऊहापोह के बीच सरकार के सामान्य प्रशासन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस पंचायत व क्षेत्र में जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन उस क्षेत्र में एक दिन का अवकाश होगा। पहले 6 मई को छुट्टियों को लेकर जो ऑर्डर जारी किए गए थे उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के तहत जब जहां पर चुनाव होंगे उन इलाकों में केवल उसी दिन की छुट्टी रहेगी। अगली खबर की बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले निजी स्कूल प्रबंधकों पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। अब शिक्षा विभाग ने विशेष जांच टीमों का गठन किया है। ये टीमें खंडवार निजी स्कूलों में रैंडम आधार पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच करेंगी। जांच के दौरान यदि किसी स्कूल के दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा और मान्यता नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग हर शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया संचालित करता है। जिन संस्थानों की मान्यता को 5 या 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें नई मान्यता या नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होता है। बीते शैक्षणिक सत्र 2025-26 के समापन से पहले विभाग ने स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ स्कूलों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसी के चलते अब विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं जो स्कूलों का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच करेंगी। जिन स्कूलों के दस्तावेजों में त्रुटियां पाई जाएंगी उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा और साथ ही नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।

वहीं अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही भी होगी। परीक्षा संचालन, मूल्यांकन या परिणाम प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय है। गंभीर मामलों में परीक्षा केंद्र को रद्द किया जा सकता है। नई व्यवस्था में कॉलेजों को विद्यार्थी की उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और परीक्षा रिकॉर्ड तय समय में विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यदि कॉलेज समय पर अंक अपलोड नहीं करता या रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई जाती हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधित संस्थान और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। नई अधिसूचना के अनुसार मूल्यांकन कार्य में लापरवाही, कॉपियों की जांच में देरी या गलत अंक प्रविष्ट को प्रशासनिक त्रुटि माना जाएगा। ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय सीधे हस्तक्षेप करेगा। इसमें परीक्षा शाखा कॉलेजों और मूल्यांकन केंद्रों की गतिविधियों पर डिजिटल निगरानी रखेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले व पर विश्वविद्यालय के अनफेयर मीन्स लागू नियम लागू होंगे। यही यदि किसी परीक्षा केंद्र में बार बार गड़बड़ी सामने आती है तो विश्वविद्यालय उस केंद्र को भविष्य की परीक्षाओं से बाहर कर सकता है। तो हिमाचल डायरी के आज के संख में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सही तो कह रहे हैं, खुद के जैसा कोई दूसरा ढूंढना आसान है क्या? खुद की नजरों में तो हम सभी हैं 10 on 10, लेकिन आखिर है क्या हमारे इस कॉन्फिडेंस की वजह, हमारे सफलताओं की नींव और असफलताओं में बढ़ते वो हाथ जो रहते हैं हमें पकड़ने के लिए तैयार? हमारा परिवार, हमारी फैमिली और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे पे। तो आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, खुशी हो या गम, साथ रहे हर पल, तारारम पम। इस फिल्म से शान महालक्ष्मी अय्यर, स्नेहा सुरेश रवन की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल और इस गाने की का म्यूज़िक बनाया है विशाल शेखर ने।

0: जल्दी सुनवाएंगे आपको आजा नचले फिल्म से ये गाना, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ

0: शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अगले गाने का इंतजार हुआ अब कम। आइए सुनते हैं आजा नच ले फिल्म से ये गाना, चित्रलोक कार्यक्रम में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, पीयूष मिश्रा के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आजा नचले फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। वैसे इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है, इस फिल्म से कमबैक हुआ था वेरी ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मूवी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, विविध भारती की तरफ से विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

सुनिए इन्हीं की फिल्म डेढ़ इश्किया से ये गाना, रेखा भारद्वाज के बोल, और माफ कीजिएगा, रेखा भारद्वाज की आवाज में बोल है गुलजार के और विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: माधुरी दीक्षित के बारे में आप और जान सकते हैं आज के फनकार कार्यक्रम में, जो कि पेश होगा आपके लिए 9:30 पर और इसका पुनः प्रसारण होगा आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं, पर सबसे पहले ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियाँ आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मोहापात्रा की आवाजों में ये गाना, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: सकते हैं। आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
0: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
1: धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए। कैसे आए, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यहाँ स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। मुख्य मुद्दा है चुनाव। आज चुनाव नगर निगम के हो रहे हैं। नगर निगम पर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आगे तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपये स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई।
0: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।
2: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार्जशीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
0: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा, जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.70 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्सेंडल @EIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। यह योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस योजना के तहत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगवा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को हर महीने इसकी रिपोर्ट निदेशालय को सौंपनी होगी। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। चंबा जिला के ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार यह मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रिपसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की तैयारियों से संबंधित अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी व गंभीरता से निभाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस वर्ष भी ये मेला चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर 1 में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं और वर्ष भर इस मेले का जिला के लोगों को इंतजार रहता है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सहब कर्मचारियों पर हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 8 विकेट पर 200 रन बनाए। 201 रन का लक्ष्य मुंबई ने 6 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला था। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, फूड लाइसेंस पर बनाई नशीली दवाएं, कंपनी मालिक गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से प्रभावित होगी पढ़ाई, स्कूलों में 1 माह देरी से शुरू होगा सिलेबस, दैनिक भास्कर की एक खबर है। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, धर्मशाला को पर्यटन व खेल हब के रूप में विकसित करना प्राथमिकता। दैनिक जागरण के शब्द है, सुक्खू बोले, पीएम की अपील से पहले ही हिमाचल कर रहा बचत। उच्च अधिकारी से सीधे पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, पंजाब केसरी की एक खबर है। नगर निकाय चुनाव का रण चरम पर, आज थमेगा प्रचार, शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है, 4 नगर निगमों पर टिकी पूरे हिमाचल की नजर। मौसम से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है, प्रदेश में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर। कांग्रेस व भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी किए जाएंगे आवंटित। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा की तय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। जिला प्रशासन ने हड़ताल पर जाने पर एस्मा लागू करने के दिए निर्देश। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 9:30। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस की उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लघु वार्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अस्मिता। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और जिसका असर हमारी जेब, हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज सभी पर पड़ता है। आज का विषय है कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। श्रोताओं, आज के आधुनिक दौर में वाहन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, बाजार जाना हो या किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी हो, हर जगह वाहन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे कई समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, बढ़ता वायु प्रदूषण, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और समय की बर्बादी आज हर शहर की बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में एक बहुत सरल और प्रभावी उपाय है कारपूलिंग। ये न केवल हमारी यात्रा को आसान बनाता है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभदायक है।

सिस्टम है। कारपूलिंग के लाभ की अगर बात करें तो पहला है ईंधन की बचत। कारपूलिंग का सबसे बड़ा लाभ है ईंधन की बचत। यदि चार लोग अलग अलग कारों में यात्रा करने की बजाय एक ही कार का उपयोग करें तो पेट्रोल और डीजल की खपत काफ़ी कम हो जाएगी। आज ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में कारपूलिंग आम लोगों के लिए आर्थिक राहत का माध्यम बन सकती है। कम ईंधन खर्च होने का मतलब है देश की ऊर्जा भी बचेगी। कारपूलिंग में यात्रा का खर्च सभी लोग मिलकर बांट लेते हैं। पेट्रोल, टोल टैक्स और पार्किंग का खर्च कम हो जाता है। रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन लंबी दूरी तय करता है तो महीने के अंत तक वह अच्छी खासी बचत कर सकता है। आज वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इससे सांस संबंधी बीमारियां, एलर्जी और कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। कारपूलिंग से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल्पना कीजिए कि यदि हर चार लोगों के लिए केवल एक कार सड़क पर चले तो सड़कें कितनी खाली और व्यवस्थित दिखाई देंगी। कम वाहन होने से ट्रैफिक कम होगा, यात्रा का समय बचेगा, सड़क दुर्घटनाओं की संभावना घटेगी, मानसिक तनाव कम होगा। आज कई लोग ट्रैफिक में फंसकर परेशान रहते हैं। कारपूलिंग इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। लगातार ट्रैफिक में ड्राइव करना मानसिक थकान पैदा करता है, लेकिन जब लोग मिलकर सफर करते हैं तो बातचीत होती है, माहौल हल्का रहता है और सफर अधिक सुखद बन जाता है। साथ यात्रा करने से अकेलापन भी कम होता है और कई बार नए मित्र भी बन जाते हैं।

श्रोताओं, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रही है। बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं कि हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। कारपूलिंग एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। यदि लाखों लोग इसे अपनाएं तो प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। कारपूलिंग विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कॉलेज या ऑफिस जाने वाले लोग अपने आसपास रहने वाले साथियों के साथ कारपूलिंग कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, खर्च कम होता है, यात्रा सुरक्षित बनती है, वाहन चलाने की जिम्मेदारी बांटी जा सकती है। यदि भरोसेमंद लोगों के साथ कारपूलिंग की जाए तो यह महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प बन सकता है। आज कई ऐप्स में पहचान, सत्यापन, लाइव लोकेशन और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। महिलाएं अपने सहकर्मियों या परिचित लोगों के साथ यात्रा करके समय और खर्च दोनों बचा सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कारपूलिंग केवल बड़े शहरों में ही उपयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण और छोटे शहरों में भी लोग इसे आसानी से अपना सकते हैं। यदि गांव या कस्बे के लोग एक ही दिशा में बाजार, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो वे मिलकर यात्रा कर सकते हैं। इससे आर्थिक बचत के साथ साथ आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ती है। अब सवाल आता है कि कारपूलिंग कैसे शुरू करें। इसके लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। अपने ऑफिस या कॉलेज के साथियों से बात करें, एक तय समय और रूट निर्धारित करें, खर्च को बराबर बांटें, यात्रा के नियम पहले से तय करें, सुरक्षा का ध्यान रखें, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लें। आज तकनीक ने कारपूलिंग को और आसान बना दिया है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से लोग अपने रूट, समय और यात्रा की जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे भरोसेमंद साथी ढूंढना आसान हो गया है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कारपूलिंग के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं, ताकि ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या कम हो सके। दोस्तों, जीवन में कई बार छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लेकर आते हैं। कारपूलिंग भी ऐसा ही एक बदलाव है। यदि हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और मिलजुल कर संसाधनों का उपयोग करें तो हमारा पैसा बचेगा, समय बचेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। यह केवल सुविधा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आने वाले समय में यदि वाहनों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसलिए आज से ही हमें ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। कारपूलिंग भविष्य की जरूरत भी है और वर्तमान की समझदारी भी। तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि जहाँ भी संभव हो कारपूलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, एक छोटी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 10:15। अब सुनिए कार्यक्रम महफिले कव्वाली।

महफिले कवाली कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अभी आपने ये कवाली सुनी, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। ये कवाली थी स्वर था मोहम्मद रफ़ी और साथियों का। अब कार्यक्रम की अगली कवाली आपको सुनवा रहे हैं एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान के मिले जुली आवाज़ों में रॉकस्टार फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले कवाली। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है पहाड़ी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले अपने सारे श्रोतियां दा कार्यक्रम च अहे बड़ा बड़ा स्वागत करदे हन। अज दा कार्यक्रम लई कन्ने स्टूडियो च हाजिर है तुंदी रेडियो दोस्त प्रीति। लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग। देवभूमि हिमाचल एक बड़ी वड्डी सांस्कृतिक विरासत खुद च समेटे, इत्थों दे लोकगीत, इत्थों दे प्राकृतिक नज़ारे हर किसी दा मन जिया समोई लैंदे हन। तां अहे कार्यक्रम दी शुरुआत करदे हन इक प्यारे जे लोकगीत कन्ने। सुन दिया मिठड़ा जिहा लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वक्त तुहां सुणन दे हन कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग। ये लोक गीत मिश्रण हन लोक संस्कृति दा कने गीत संगीत दा। हर लोक गीत खुच समेटिया कोई ना कोई कहानी, कोई संदेश। तो आओ श्रोताओं मिलने सुणदे हन कार्यक्रम दा ये अगला लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तपे श्रोताओं, इसी लोकगीत सौगी आज का एक कार्यक्रम लोकरंग उन्हें थी संपन्न होता है। दो अनुमति नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी की हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
1: धर्मशाला नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए। कैसे आए, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यह स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। मुख्य मुद्दा है चुनाव। आज चुनाव नगर निगम के हो रहे हैं। नगर निगम पर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आगे तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपया स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई।
0: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश हो चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनावों में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी।
2: ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन, झूठी गारंटियां, उसके खिलाफ जनता के मन में जो रोष है वो निगम के चुनावों में दिखेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो या पंचायती राज के चुनाव, इन सब में एक गुस्सा जो जनता के मन में है वो फूट कर बाहर आएगा। चार्जशीट आज हमने जारी की है जहां कांग्रेस के घोटालों से लेकर उनके दिवालियापन के बारे में बताया गया है। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल, नगर परिषद के चुनाव हम सारे जीतने वाले हैं और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
0: प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगमों सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन

17 मई को ही की जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों का आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी मैदान में शामिल उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन वापस लेने के कल पहले दिन 436 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। प्रदेश की 3754 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। मंडी नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को विकास से कोई सरोकार नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 वर्षों तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता और जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए की आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक होने के कारण

0: ने उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:06 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज़ में, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फ़ोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज़ में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फ़ोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है, ये जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में, संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

एरा गैरा नथु खैरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
0: वनिता मंडल कार्यक्रम में अपनी सभी सखियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का एक कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में हाजिर हो चुकी हैं आपकी अपनी रेडियो सखियां। मैं हूं प्रीति और मेरे साथ हैं
2: अस्मिता।
0: तो हम दोनों का हमारी सभी प्यारी प्यारी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। और कैसी हैं अस्मिता आप?
2: जी प्रीति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, खुश होंगी, हंसते हुए अपने कामों में लगी होंगी और साथ ही साथ कार्यक्रम सुन रही होंगी जिसका नाम है वनिता मंडल।
0: जी, और ये कार्यक्रम विशेष तौर पर हम अपनी सखियों के लिए लेकर आते हैं और बहुत सारी जानकारियां और साथ साथ में उनका मनोरंजन होता है
2: जी।
0: तो आज भी जानकारियों का पिटारा खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नया है।
2: बिल्कुल, आज भी जानकारियों का सिलसिला जारी है और देखिए प्रीति, मैं आपसे कहूँ कि आज का दिन थोड़ा सा खास है
0: जी
2: भाई। जैसे कि हमारी बहनों को भी अंदाजा हो गया होगा कि आज क्या खास दिन है, तो आज है देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
0: जी।
2: और ये हम जब परिवार की बात करते हैं तो हमेशा मतलब हमारे आंखों के सामने मतलब एक भरा पूरा परिवार जो है वो सामने आ जाता है
0: जी,
2: जिसमें माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो एक अच्छे परिवार का निर्माण करते हैं
0: जी। तो देखिए, सखियां हैं जो रेडियो की दुनिया से जुड़ी हैं, वो भी हमारा एक परिवार हैं, वो हैं तो हम हैं। और बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, जो कि हर साल 15 मई को मनाया जाता है। और इस बार की भी थीम की बात करें तो इस बार का भी मुख्य विषय है परिवार, असामान्यताएं और बाल कल्याण। ये दिन जो है परिवार में सामाजिक आर्थिक महत्व को उजागर करता है और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। क्योंकि जैसे हमने बात की कि परिवार है तो हम हैं, परिवार है तो रास्ते आसान हैं, मंजिलें पास हैं और चलना आसान है। क्योंकि देखिए, हर चाहे प्रकृति ने किसी भी जीव को बनाया है, उसका एक छोटा सा परिवार होता है, वो परिवार में रहना पसंद करता है और परिवार हर तरीके से हमारे साथ होता है। कई बार समय बहुत अच्छा है तो खुशी में साथ है, दुख हैं हम तो हमारे दुख में वो साथ होता है, हमें हिम्मत हमारी बढ़ाता है। तो परिवार जो है वो असमानताओं को दूर करता है और जैसे बाल

0: कल्याण की बात की इस बार की थीम की, तो ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे खराब आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं। तो
1: जी
0: ये अच्छी नीतियां लाने को बढ़ावा करता है ताकि परिवार को समर्थन मिले। और इसके इतिहास की बात करें तो ये दिवस पहली बार जो है वो सन 1994 में मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे घोषित किया गया, और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 15 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि समाज में परिवार एक मूलभूत इकाई है जिसको हम सम्मानित करते हैं। परिवार के सामने कई सारी चुनौतियाँ आती हैं जिसको विचार विमर्श करके जो है सुलझाया जाता है। तो मानव सभ्यता के विकास, उसके समूचे एक केंद्रीय धुरी हम मान सकते हैं कि एक परिवार है। तो परिवार जो है उसमें कई सारी भावनाएं, विश्वास, दृढ़ता, सारी चीज़ों को सहेज के रखता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिवार का बहुत महत्व है, क्योंकि एक सुंदर सार्थक यात्रा का आरंभ जो है परिवार से ही होता है। मनुष्य सामूहिकता सीखता है, समर्पण सीखता है, एक दूसरे के साथ कैसे मेलजोल बढ़ाना है वो सारी बातें सीखता है।
1: जी और परिवार जो होता है प्रीति, वो हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है जिस परिस्थिति में कई बार हम जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं।
0: जी
1: जैसे कि आपने कहा कि परिवार जो है वो हमें खुशी देता है, हमारे गम में हमारा साथ देता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, अपनी खुशी को बांटने के लिए भी हमें परिवार की ज़रूरत पड़ती है,
0: जी
1: क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी खुशी है वो बांटने से बढ़ती है।
0: जी और देखिए, परिवार किसी भी व्यक्ति की केवल जीवन का आश्रय नहीं है कि हम हमारा परिवार है, बल्कि एक हमारे हम कह सकते हैं कि समग्र विकास का केंद्र है। मनुष्य जन्म लेता है परिवार में, पहली गुरु उसकी माँ होती है, हर चीज़ वो एक परिवार में रहकर सीखता है, तो उसका समग्र विकास होता है परिवार में। उसे सुरक्षा का एक माहौल मिलता है, बिना किसी भय संकोच से वो अपने भावनाएं, अपने विचार जो है वो व्यक्त करता है। तो परिवार का जो है व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का विकास, सहानुभूति, अनुशासन, ये सारे गुण जो हैं बच्चे या मनुष्य परिवार में रहकर ही सीखता है। तो इन सारे गुणों का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास एक परिवार होता है।
1: बिल्कुल
0: तो भारतीय संस्कृति में परिवार की बात करें तो एक परंपरा का दर्शन है। सारे एक उस संस्था, परिवार की संस्था में रहते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन का आधार है, जहाँ न केवल व्यक्ति जीवन जीना सीखता है बल्कि जीवन के कई मूल्यों को भी सीखता है। जैसे बच्चे हैं, सच बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, झूठ बोलते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, तो

0: एक जरिया है जिससे मनुष्य अच्छे बुरी और जो भी आते हैं उसका वो निर्वाह करता है, क्योंकि
1: जी
0: बच्चों को, क्योंकि हम में से मतलब सभी को कई चीज़ों का पता नहीं होता, खास तौर पे बच्चों को, कि भाई क्या सही है क्या नहीं। और ये परिवार जो है वो इस चीज़ में अपना अहम भूमिका निभाता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देता है, ताकि कौन से समय में वो चीज़ें उनके काम आ जाए उसके बारे में उन्हें सजग बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार जो है उसको मनाने का कोई खास दिन नहीं भी हो, लेकिन फिर भी परिवार तो हमारा मतलब ऐसा है जो हमें एकजुट करता है, और इसीलिए ये खास दिन मनाए जाते हैं ताकि हम अपने परिवार के प्रति सजग रहे और परिवार की अहमियत को भी समझें। क्योंकि
1: जी
0: आज का जिस तरीके का समय बदल रहा है प्रीति, एकांकी परिवार हो गए हैं।
1: जी
0: पहले के कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होते थे, माता पिता, बच्चे, मतलब चाचा चाची, बहुत बड़ा परिवार होता था जिसमें बच्चे को अकेलापन महसूस नहीं होता था, और वो अपने मतलब उनके अपने परिवार के साथ ही अच्छा समय बिताते थे, अच्छी अच्छी बातें सीखते थे, अपनी दिल की बातें करते थे। और
1: जी
0: वही आज जो परिवार का रूप बदल रहा है, तो एकांकी परिवार हो गए हैं, सब नौकरी पेशे वाले हो गए हैं, तो बच्चों को भी वैसी एकाग्रता नहीं मिलती। बच्चे भी अपना मतलब अपने दिल की बातें करने से कई बार उनको क्या होता है कि कौन सी बात उनको करनी है, किससे करनी है, वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो इस समय परिवार जो है वो बड़ा ज़रूरी, बहुत अहम भूमिका जो है वो निभाता है, और ख़ास तौर पर संयुक्त परिवार जिसमें बड़े बुजुर्ग भी अगर बच्चों के साथ हो तो उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, उनमें संस्कार डालते
1: भल
0: हैं, है
1: जी
0: ना?
1: जी बहुत सही बात कही अस्मिता कि हम कोई भी दिन जैसे मना रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक थीम रखी जाती है ताकि हम उसके महत्व को जानें और एक बार फिर से याद करें कि कितना महत्व जो है परिवार रखता है। लेकिन जैसे आपने बात करी कि एकाकी परिवार हो रहे हैं, पहले संयुक्त होते हैं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ
0: कुछ
1: जो है
0: बदलता
1: बदला
0: है।
1: है, लेकिन परिवार तो परिवार ही है, अगर हम साथ हैं या दूर हैं। लेकिन कई बार कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, तब हमें एकजुट होके खड़े होना है, तभी परिवार का महत्व होता है। क्योंकि देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बदलते बदलाव के साथ जो है कुछ चीज़ें हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है। तो इसी बारे में बात करेंगे कि परिवार को सशक्त बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और परिवार में जो परिवार के व्यक्ति हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हर व्यक्ति की परिवार के प्रति जो है वो बनती है।
0: जी
1: तो जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है, तो अपनी सखियों को कार्यक्रम में सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत और
0: जी
1: बाकी की जानकारी इस गीत के बाद।
0: जी

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: एक बार फिर से हमारी सभी सखियों का स्वागत है कार्यक्रम वनिता मंडल में। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में, कि परिवार की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका है। इस बार की थीम के बारे में हमने बताया। और देखिए, परिवार जो है हमारे जीवन की एक धुरी है। एक स्वस्थ परिवार की बात करें तो एक परिवार जो स्वस्थ परिवार होगा वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, जो सुसंस्कृत होगा, संतुलित होगा, परिवार के सदस्यों में अनुशासन होगा, सहिष्णुता होगी, एक नैतिकता का वातावरण होगा, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। परिवार व्यक्ति के आचरण को दिशा देने की एक पहली संस्था होती है। और परिवार में आप कई नैतिक मूल्य सीखते हैं। और अब बात करेंगे परिवार को सशक्त बनाने के बारे में, कि हम क्या क्या चीज़ें अपने परिवार को सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं।
4: जी हाँ, तो देखिए प्रीति, परिवार की सुदृढ़ता केवल भावात्मक जुड़ाव से ही नहीं होती है, बल्कि सचेत प्रयासों, संतुलित व्यवहार से भी इसका निर्माण होता है।
3: जी।
4: बदलते समय की चुनौतियों के बीच परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ व्यवहारिक और सार्थक कदम अत्यंत जरूरी हैं, जैसे नियमित संवाद और पारस्परिक समझ, परिवार के सदस्यों के बीच खुला ईमानदारी और निरंतर संवाद विश्वास की नींव को सुदृढ़ करता है।
3: जी,
4: की भावनाओं की, विचारों की आवश्यकताओं को समझना, प्रयास आपसी संबंधों को गहरा और स्थायित्व बनाता है।
3: बिल्कुल, देखिए परिवार के साथ जब आप एक अच्छा सा समय, गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं तो आप एक दूसरे को जीवंत बनाते हैं। साथ में बैठकर भोजन करना, बात करना, सामूहिक जो गतिविधियां होती रहती हैं परिवार में उनमें भाग लेना, इससे एक आत्मीयता का जुड़ाव बढ़ता है और आपको एक दूसरे के करीब लेकर आता है। क्योंकि जैसे आपने बात करी कि आज की जो जीवन शैली है बहुत ही भाग दौड़ भरी हो गई है, हर कोई व्यस्त है और व्यस्त रहना सही भी है, लेकिन अपने परिवार के लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ही होता है जो अंत में आपके साथ खड़ा होता है। तो ज़रूरी है कि अपने परिवार को एक समय दें जब ज़रूरी है, जैसे साथ में भोजन करना, बच्चों की बातें सुनना, कुछ विषय पर चर्चा करना जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हो।
4: जी, और वहीं बच्चों और बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशीलता, परिवार के संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान और स्नेह रखना, उनकी आवश्यकताओं को, भावनाओं को उनका ध्यान रखना, परिवार की आत्मीयता और संतुलन को रखना, डिजिटल संतुलन बनाए रखना, आधुनिक तकनीक के उपयोग में संतुलन अत्यंत बहुत जरूरी हो गया है।
3: जी बिल्कुल, वही होता है कि हम दूर से बात कर रहे हैं या मैसेज कर देते हैं, डिजिटल युग है। एक तो बात सही है कि बहुत जल्दी हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, लेकिन जो एक अपने आप मिलना होता है उसकी बात ही अलग है। एक बहुत दूर देश में रह रहे हैं, एक दूसरे को जोड़े रखता है, लेकिन जब आप खुद अपने आप
4: आपसी मेल मिलाप जब होता है तो उसकी बात ही अलग होती है, उसमें भावनाएं, उसी बात को कहने में उसमें भावनाएं भी जुड़ जाती हैं साथ में।
3: जी, तो वही बात है कि एक सशक्त और संतुलित परिवेश का निर्माण करना है, जिससे आप अपने परिवार को और सशक्त बनाएं और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और शिक्षा और जागरूकता भी ज़रूरी है, समाज में पारिवारिक मूल्यों की, जिम्मेदारी की महत्ता को समझना, इसके लिए ज़रूरी है शिक्षित होना, हर व्यक्ति को अच्छे से व्यवहार करना। जैसे आपने बात की कि बुजुर्ग और बच्चे घर के सबसे ज़रूरी पात्र होते हैं, तो उनको स्नेह चाहिए होता है, थोड़ा सा एक समय चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो थोड़ा सा उनके साथ भी समय बिताना, संवेदनशील एक वर्ग होता है वो, तो उनकी शिक्षा, उनके पोषण का, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना जो उनके जीवन को सम्मानजनक बनाती है।
4: जी हाँ।
3: जी, तो जैसे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और हम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। बात तो कर ली कि साथ में समय बिताएं, एक अच्छा सा समय हो, साथ में खाना पीना आपका इकट्ठा हो, और जब भी समय मिले, कोई आपके दूर के रिश्तेदार हैं या आपके माता पिता आपसे दूर रहते हैं, समय निकालकर अपने परिवार से ज़रूर मिलें।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि जैसे बात की कि परिवार है तो हम हैं, और अब बात करेंगे परिवार के हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी परिवार के प्रति बनती है, क्योंकि परिवार सभी व्यक्तियों से मिलजुल कर बनता है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति है।
4: जी, तो पहली जिम्मेदारी माता पिता की होती है।
3: जी,
4: जैसे पालन पोषण और शिक्षा, बच्चों को बुनियादी सुविधाएं, सही संस्कार और अच्छी शिक्षा देना माता पिता की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है।
3: जी,
4: उनके साथ ही स्नेह और सुरक्षा, बच्चों को भावात्मक सुरक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सकें।
3: और इसी तरह बच्चों का भी कर्तव्य है, माता पिता तो अपने कर्तव्य निभा ही रहे हैं, बच्चे भी अपने माता पिता, अपने घर के जो बड़े हैं उनका आदर सत्कार करें, अगर वो कुछ आपको बोल रहे हैं आपके भलाई के लिए तो उस आज्ञा का पालन करें, सहयोग करें, आपके माता पिता जो भी कार्य करते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना जो है ज़रूरी है, आप अपने आचरण से अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं।
4: जी, उसके बाद देखिए जीवन साथी की भूमिका हो गई, जैसे आपसी सहयोग और समझ हो गया, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना, परिवार को जोड़ना, जैसे घर का माहौल पॉजिटिव रहे, खुशनुमा बना रहे।
3: जी,
4: इसके साथ ही बुजुर्ग, घर के बुजुर्गों का योगदान भी होता है भाई परिवार में, जैसे मार्गदर्शन, अपने जीवन के अनुभवों से परिवार को सही राह दिखाना, संस्कृति और संस्कार, परिवार की परंपराओं और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये बिल्कुल कर्तव्य है।
3: जी, बुजुर्ग ही हमें बताते हैं कि नहीं ये काम ऐसे करें, ये करें, और उन्हें हमें सुनना भी चाहिए, जो सही बातें हमें आगे बढ़ा रहे हैं, उन सांस्कृतिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को हमें आगे लेकर जाना है। जब हम उन बातों को मानते हैं तो हमारे जो घर के परिवार के छोटे सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं, और परिवार का हर व्यक्ति एक धागे की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें मजबूती बनी रहे तो एक खुशहाल परिवार समाज में बनता है, और आपका परिवार खुश है तो आप हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और एक स्वस्थ जीवन शैली आप अपनाते हैं, सकारात्मक विचार आपके रहते हैं, तो परिवार का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। हर मनुष्य, चाहे प्रकृति का कोई जीव भी हो, परिवार से ही उसे पहचान मिलती है, सीखने को मिलता है, तो एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी समय कितना भी कठिन आ जाए, अगर हम साथ में खड़े होते हैं तो वो एकदम से कट जाता है।
4: बिल्कुल,
3: तो बिल्कुल अब बातों के साथ साथ, इन जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है, तो एक और प्यारा सा गीत अपनी सखियों के रेडियो सेट्स पर भेजते हैं।
4: बिल्कुल जी, बिल्कुल।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल, और कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। और अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं, तो अब बात करेंगे परिवार क्या खुश रहने के साथ सूत्र जो है हमें सिखाता है।
4: जी, सबसे पहला सूत्र है प्रीति, सामूहिकता। आधुनिक मनोविज्ञान में स्वतंत्रता के ऊपर परस्पर निर्भरता को रखा गया है। स्वतंत्र व्यक्ति अकेले काम कर सकता है, लेकिन परस्पर निर्भर व्यक्ति महान परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं को दूसरों के साथ जोड़ता है। और परिवार हमें सामूहिक प्रयास को शक्ति को सिखाता है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है।
3: जी, और इसी के साथ भावनात्मक सुरक्षा जो है, हम परिवार में रहकर जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं तो आपको एक भावनात्मक सुरक्षा भी मिलती है, जिससे कि आपके रिश्तों में तनाव कम होता है और आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। परिवार आपको भरोसा करना सिखाता है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी पूंजी है, और कई सारी समस्याओं को आप सुलझा लेते हैं।
4: जी, और तीसरा है साझा विजन। मतलब जिस तरह सफल कंपनियां होती हैं, उनका विजन स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही जो प्रभावी परिवार के पास जो होता है वो स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। जिन बच्चों को पता है कि उनका परिवार किन मूल्यों जैसी ईमानदारी, मेहनत, सेवा के लिए खड़ा है, वे बाहरी दबाव से कम भटकते हैं। और परिवार हमें जीवन का उद्देश्य पाना सिखाता है, ये हमारे लक्ष्य को स्पष्ट और सरल भी बनाता है।
3: जी, और शब्दों का अर्थ भी समझता है परिवार। अगर हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं भी बोल रहे हैं, तो भी वो समझता है कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं, कोई परेशानी हमें है, या फिर हम कुछ शब्द कम बोल रहे हैं, तो हमारे शब्दों के पीछे दर्द और खुशी को पढ़ना जो है वो परिवार सीखता है, समझाता है। परिवार शब्दों और भावों के अर्थ को समझना सिखाता है।
4: जी, और वहीं लचीलापन। जो बच्चे अपने परिवार की उतार चढ़ाव भरी कहानियाँ, जैसे अपने दादाजी से गरीबी से कैसे लड़ाई की जाती है, मतलब ये संकट के समय अधिक मजबूत साबित होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हमारा परिवार हर दिशा में आने वाली मुश्किलों से जीतना जानता है। और परिवार से मिली ये कहानियाँ हमें लचीला बनाती हैं, और परिवार हमें अतीत से जोड़कर भविष्य के संघर्षों के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करता है।
3: जी, क्षमाशीलता हमें सिखाता है, निस्वार्थ योगदान सिखाता है कि परिवार में हर सदस्य है। कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो गलतियाँ करना स्वाभाविक है, लेकिन उनको सुधारना, क्षमा करना भी एक बड़ी बात है। निस्वार्थ योगदान देना, आप मिलजुल कर काम करना सीखते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, जिससे कि मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जो कि आपके संबंधों को मजबूत बनाते हैं और परिवार जो है खुशहाल बनता है। तो देखिए अस्मिता, हम यही चाहते हैं कि हमारी सभी सखियां और उनका परिवार बिल्कुल खुशहाल रहे, इन सात सूत्रों को अपने जीवन में बांध कर रख के। और अब इन्हीं जानकारियों के साथ आज का एक कार्यक्रम वनिता मंडल अब यहीं संपन्न होता है। अपने सखियों से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
5: वनिता मंडल।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:31 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर प्रीति, लेकर आई हूं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उपकार फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

आपने ट्यून किया है आपके अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल जले से, और इसे गाया है कुमार सानू, आदित्य नारायण और साथियों ने।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरो से, और इस गीत को गाया है अमान मलिक ने।

आपने ट्यून किया है आपकी अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 101.8 MHz पर और कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए। श्रोताओं, ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी के रेडियो सेट्स पर। इसे हमने लिया है फिल्म क्योंकि से और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं, अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूँ। गर्मी जहाँ झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नरम फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ, रेलगाड़ी का सफ़र, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाज़ा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफ़र की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाज़ा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियाँ आपके लिए फिल्में ज़्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी या दुलार ज़्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज़ में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफ़र में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल का नाम है। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए ज़रूर आपको कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीज़ी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोर पुलिस, कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफ़र में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज़्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज़्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे हैं ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो ज़रूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। ज़मीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रख कर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में। भाई इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुलस्ती हुई तेज़ गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफ़र करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपका ये सफ़र सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि

0: बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है?
1: तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई कि मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से, जान किस अदा

0: की छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से और जान किस

0: सबकी छुट्टी हो गई, अपनी हो गई सगाई, सबकी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज़ में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफ़र, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं, और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं, और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें, हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे, और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

0: घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतने रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गाँव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों बहुत सी बातें याद की हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है, और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आयुषण में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था, और हम दोस्त के घर का दरवाजा, हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
1: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, दूना 30, 43, 44, चौके 60, 75, 76, 90, 60, 55, 80, 20 नंबर 35 गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अशोक कुमार की आवाज गुलजार के।

फूल बसंत देसाई का संगीत कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे। फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे। सीटी बजाना, कोयल की आवाज़, टक टक की आवाज़ निकालना आदि, वो सब आवाज़ मेरे अंदर बैठी है बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज़ में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियाँ देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपये वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज़्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो ज़रूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2, 3, 5, 10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोग ऐसे भोले भाते भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीज़ों का। और एक साथी कहती हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज़ों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियाँ बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे, आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियाँ होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां ख़त्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाज़त। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहता है 24 घंटे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला।

0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की।

0: ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युतसरण से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: देखो जी।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज़ गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोज़ाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोज़ाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

ये कैसी प्यारी प्यारी लगन सी लगा दी, कलकत्ता तुमसे

0: अरे हेलो हेलो हेलो।
1: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज़, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले चुनाव को लेकर अब से कुछ देर पहले 3 बजे खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आज सोलन में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहाँ की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश झेल रही है, वो साफ दिखता है कि दर्द क्या है। इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे, ना पानी आता है लेकिन बिल दिल खोल कर आता। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी फिर मुकर गए।
0: उधर नाहन नगर परिषद में भी प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस व भाजपा ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नगर परिषद में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से जनता खुश है। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
3: एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपना आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो है आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोर्ट में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है, कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
0: राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी की टीम आज दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है बच्चों को भोजन के अलावा मानसिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
4: भारत में बच्चों के पोषण की चर्चा अक्सर भोजन तक सीमित रह जाती है। ये मान लिया जाता है कि यदि बच्चे को भरपेट खाना मिल रहा है तो उसका विकास सही दिशा में हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए केवल रोटी दाल और दूध ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसे प्यार, संवाद, खेल, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक प्रोत्साहन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी के बाद ये सच्चाई और स्पष्ट होकर सामने आई है। नई दिल्ली के बाल चिकित्सा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शरथ गोपालन बताते हैं कि हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे क्लिनिकों में पहुंच रहे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास में पीछे रह गए हैं। ये स्थिति केवल बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि महामारी के दौरान बच्चों के जीवन में आए बदलावों के कारण पैदा हुई। वे एक 5 वर्षीय बच्चे का उदाहरण देते हैं जो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी पीछे थी। उसकी बोलने की क्षमता धीमी थी, वो सामाजिक रूप से कम सक्रिय थी और मानसिक विकास के परीक्षण में लगभग 3 वर्ष की बच्ची के स्तर पर पाई गई। जांच में कोई बीमारी सामने नहीं आई, लेकिन जब उसके पिछले 2 वर्षों की परिस्थितियों पर नजर डाली गई तो कारण स्पष्ट हो गया। लंबे लॉकडाउन, स्कूल बंद रहने, घरों में कैद जीवन, खेलकूद की कमी और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने उसके विकास को प्रभावित किया था। यही कहानी अकेली नहीं है, देश भर में हजारों बच्चे इसी तरह के विकासात्मक अंतर का सामना कर रहे हैं। महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चों का विकास केवल भोजन से नहीं होता, बल्कि अनुभवों, संवाद और सामाजिक वातावरण से भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 90% विकास 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। यही वो समय होता है जब मस्तिष्क में करोड़ों तंत्रिका संबंध बनते हैं जो सीखने, सोचने, भाषा,

0: और सेलेनियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आयरन की कमी से बच्चों में सीखने की क्षमता कमजोर हो सकती है, स्मरण शक्ति प्रभावित होती है और उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA मस्तिष्क संरचना और दृष्टि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलीन नामक पोषक तत्व भी अब बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। बच्चों का पोषण जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क माँ के पोषण पर निर्भर करता है। यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्व नहीं मिलते तो बच्चे के विकास पर उसका सीधा असर पड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में केवल 44% गर्भवती महिलाएं ही अनुशंसित अवधि तक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेती हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ किशोरियों के स्वास्थ्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आज की स्वस्थ किशोरी ही कल की स्वस्थ मां बनेंगी, लेकिन भारत में लगभग 59% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। स्कूलों और समुदाय स्तर पर पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना इसलिए जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी बेहतर स्वास्थ्य के साथ जन्म ले सके। हालांकि केवल पोषण पर्याप्त नहीं है, महामारी के दौरान लंबे समय तक घरों में बंद रहने से बच्चों का खेलना, दोस्तों से मिलना, बातचीत करना और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना लगभग बंद हो गया। इसकी जगह मोबाइल और टीवी स्क्रीन ने ले ली। यूनिसेफ का अनुमान है कि कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में हर 7 में से एक बच्चे ने सीखने या विकास में गंभीर नुकसान झेला है। इसका मुख्य कारण बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क और खेल की कमी थी। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
3: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
2: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
3: और सच
2: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
3: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
2: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
3: बिल्कुल सही कहा आपने। उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
2: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
3: जी, बहुत सही बात आपने कही और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
2: बिल्कुल सही कहा, सुना लीजिए आपने। जी,
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी। कहाँ से फोन लगाया
1: हाँ,
0: आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके
1: हाँ,
0: बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ
1: हाँ
0: मैं। हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर
1: हाँ
0: परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो
1: हाँ
0: सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना।
1: हाँ
0: और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर
1: हाँ
0: सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई थी।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ, मैं
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल सहेली
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सुनती हूँ
0: और हेलो सहेली भी सुनती है
1: और हेलो सहेली।
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है
1: जी
0: परिवार दिवस, 15 मई को
1: जी
0: हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं के
0: जी
1: आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली,
0: नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी,
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से,
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: शिरपुर जैन।
0: जी
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में? मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता
0: और सचमुच जब
1: है।
0: कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें
1: का।
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: भी ऐसा
1: खुश
0: नहीं
1: हो
0: लगता कि
1: जाते,
0: मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत पे फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ,
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो तो रहता रेडियो है दिन
0: दिन भर
1: भर।
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली, क्या
1: आलो सहेली।
0: नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़। बड़े
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: गांव से। हाँ,
0: बड़े गांव
1: गुना जिले।
0: जी। तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मौड़ा मौड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भवले,
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर
1: हाँ
0: साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना,
1: हाँ
0: सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों
1: हाँ
0: को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन
1: हाँ
0: है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो

0: आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चे का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद साटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम

0: मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोयम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं, रेडियो का साथ जुड़े रहते हैं।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
0: हाँ
1: घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर
0: मशीन से।
1: है ना?
0: हम अकेले सब सिमट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
0: हाँ कही
1: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
1: और उसमें आपको खुशी
0: और जब
1: मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं।
0: हाँ जी
1: तो बस खुश रहिए,
0: हाँ
1: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
0: हाँ
1: आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी।
1: जी, और आपने
0: 2
1: पसंद
0: महीना से छटपटा रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
1: अच्छा चलो
0: सप्तम
1: बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: शिवम सुंदरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए अपने
1: हाँ,
0: बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, खास तालाब है, महाबलेश्वर है
0: जी, सातारा घूमने
1: जी,
0: लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, चार
0: क्या
1: महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे
1: जी
0: एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के
1: जी
0: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी, 57
0: अच्छा।
1: मैं घर

0: नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है, फिर घर में क्या करने का। इसी वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात है,
0: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात है,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
0: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग काला।

तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानि 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028, 2867028. और मुंबई का एसटीडी कोड है

0: दो दो यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूलकाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के

इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी।

भी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी?

आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया। मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपये भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का, UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे, संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी।

सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। छाया गीत लग जागने हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। तेरे मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन। कार्यक्रम होगा भजन संध्या। युवमंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकते हैं और शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम शाम 6:05 पर जरूर सुनिएगा। 6:30 का समय रहेगा खेती बाड़ी कार्यक्रम का। शाम 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ फिल्मी भजन। 7:25 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम रौनका ग्राएं दियां। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं। रात्रि 8:00 से 8:45 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन सकते हैं। समाचार संध्या का अंक 8:45 पर और रात्रि 9:00 News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 से लेकर 10:00 तक आनंद उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। 10:00 शास्त्रीय संगीत के साथ आपका मनोरंजन करेंगे। चांदनी रातें कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात्रि 10:30 पर। 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:07 55 हुए हैं। आइए शुरू करते हैं भजन संध्या कार्यक्रम।

जी, ये भजन आपने सुना हरदेई और मिल्केश वर्मा की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं शेर सिंह और साथियों का गाया ये पहाड़ी लोकगीत।

0: जी, संजीव दीक्षित के आवाज़ में गाए इस भजन के साथ ही आज का भजन संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:31 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवमंच।

0: गुड इवनिंग युवा दोस्तों, आज का युवमंच कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं भावना कतना। और आज के युवमंच कार्यक्रम में भी हमारे युवा दोस्तों के लिए ढेर सारी जानकारियाँ हम लेकर आए हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके करियर के बारे में। और कुछ जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं आज के दिवस, यानी कि आज 15 मई का दिवस है। आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जयंती मना रहे हैं। जी हाँ, 1864 में आज ही के दिन 15 मई को उनका जन्म हुआ था दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में। उनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 तक रहा, इसके प्रवर्तक थे, महान संपादक और सुधारक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका, जो कि 1903 से 1920 के बीच में आई थी, इसका संपादन कर खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत किया था, व्याकरण सम्मत और साहित्यिक भाषा बनाया था हिंदी बोली को। रायबरेली के दौलतपुर में जन्मे द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य पद्य को नई दिशा दी थी। जी हाँ, उनके बारे में आपको बताएं, धन अभाव के कारण औपचारिक शिक्षा कम हुई उनकी, लेकिन अपने आप से अध्याय करके, यानी कि स्व अध्याय से संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने रेलवे में नौकरी की, लेकिन स्वाभिमान के कारण इस्तीफा दे दिया और फिर हिंदी सेवा में समर्पित हो गए। उन्होंने 1903 से 1920 तक सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया और 21 दिसंबर 1938 को उनका निधन हुआ था। उनके बारे में आपको बताएं, साहित्यिक योगदान के बारे में बताएं, उनकी विशेषताएं बताएं, तो देखिए, हिंदी भाषा को व्याकरणिक शुद्धता प्रदान की उन्होंने और खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में स्थापित किया। निबंधकार, आलोचक, संपादक और अनुवादक के रूप में उन्होंने काम किया, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वे। और द्विवेदी युग की बात करें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के दूसरे चरण को उनके नाम पर द्विवेदी युग का या फिर जागरण सुधार काल कहा जाता है। कवियों को ज्ञान, भक्ति और आदर्श चरित्र संस्कृत साहित्य की ओर लौटने की प्रेरणा भी उन्होंने ही दी। उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो नाट्यशास्त्र विक्रमांकदेव, चरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये मौलिक कृतियां थी उनकी। और अनुदित कृतियों की बात हम करें तो शिक्षा स्पेंसर, स्वाधीनता और कुमार संभव सार, ये उनकी अनुदित प्रमुख कृतियां हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया, जो रूढ़ियों को तोड़कर तार्किकता और परिष्कृत भाषा के प्रयोग पर केंद्रित था। जी हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इन्होंने देखिए, परिस्थितियां इतनी विपरीत थी जब ये युवा काल में थे, धन का अभाव था, औपचारिक शिक्षा कम हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप अध्याय किया और सब शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, सब का ज्ञान प्राप्त किया। और इनमें इतना जो है स्वाभिमान था कि रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन स्वाभिमान के कारण वहाँ भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन वही बोलते हैं ना युवा दोस्तों, कि अगर मन में आपके लगन हो, हौसला हो, तो आप उसके दम पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्हें देखिए, धन का अभाव था, है ना, शिक्षा की भी कमी थी उस टाइम पर। आप सोचिए कि इतना ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था हर किसी के लिए, लेकिन फिर भी इनके मन में इच्छा थी और इन्होंने ठान लिया था कि मैंने क्या करना है। तो इसीलिए वो अपने, चाहे कितने भी अभाव थे, फिर भी वे आगे बढ़ते गए, ज्ञान अर्जित करते गए और फिर वे महान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। तभी तो हम इनकी जीवनी आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि इनके जीवन से आप भी प्रेरणा ले सकें। अगर कहीं भी जीवन में हम असफल हो जाते हैं, तो हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। बस अपनी परिस्थितियों को अगर आपके अनुकूल नहीं हैं, तो उन्हें भी एक अवसर के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए, कि हर जो परिस्थिति है उसको एक अवसर के रूप में देखिए, उसको पहचानिए, अपने अंदर के गुणों को पहचानिए और आगे बढ़िए। ये जो महान लोग होते हैं ना, इनकी जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है। जी युवा दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, और अब एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ और जानकारी देंगे आपके करियर से रिलेटेड। पर पहले मनोरंजन की बात कर लेते हैं, एक म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मौसम अचानक ये बदला है क्यों?
2: Karan, it's really easy.
3: No,
2: come on.
3: Wait, I can't. This is so unfair.

जी, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। युव मंच कार्यक्रम आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए, हमारे कई युवा साथी जो हैं CUET UG की परीक्षा दे रहे होंगे, है ना, और 11 मई से ये शुरू हो चुकी है और 31 मई तक चलने वाली है। तो इसके बारे में बताते हैं आपको कि किस तरह से आप, देखिए, चल रही है परीक्षा, रिविज़न आप किस तरह से कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG परीक्षा, है ना, ऐसे ये जो है ना हो रही है, परीक्षा चल रही है, 11 मई से शुरू हो चुकी है, और इसमें जिन छात्रों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है उनके लिए बचे हुए समय का सही और प्रभावी उपयोग करना बेहद आवश्यक है। परीक्षा के नज़दीक आते समय तनाव महसूस होना स्वाभाविक है, वो तो होता ही है, लेकिन सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास के जरिए इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि आपने साल भर जो मेहनत की है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सही रणनीति से की गई परीक्षा की तैयारी आपको सफलता के और करीब ले जाती है और कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए, सिर्फ पढ़ने के बजाय अपनी तैयारी को और अधिक सक्रिय बनाना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें, जैसे कि इससे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, या फिर बिना देखे जवाब देने की कोशिश करें। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अब एक अलग कॉपी रखिए जिसमें आप अपनी गलतियां लिखते चलें, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, जो आपसे गलती हो रही है उसको आप एक कॉपी में लिखते चलें। जब आप मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं और कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसे उस कॉपी में नोट कर लें, और साथ में ये भी लिखें कि इसका सही जवाब क्या था और गलती क्यों हुई। इसके बाद उस कॉपी को रोज़ थोड़ा समय निकाल कर दोबारा पढ़ें। इससे आपको अपनी कमज़ोरियाँ साफ समझ में आने लगेंगी और आप उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे, और ये तरीका धीरे धीरे आपकी सटीकता और स्कोर दोनों बढ़ाने में मदद करता है। ऑडियो रिवीजन की बात हम करें तो देखिए, जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं उन्हें अपनी आवाज़ में बोलकर रिकॉर्ड कर लें, फिर उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके बाद जब भी आप खाली हों उसे सुनते रहें। इससे बार बार पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और समय का सही उपयोग हो जाता है, और साथ ही सुनने से याददाश्त भी मजबूत होती है और कठिन टॉपिक्स आसानी से समझ में भी आने लग जाते हैं। ये तरीका आजमा कर देखिएगा, काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। और देखिए ना, अभी जैसे आपके सब्जेक्ट वाइज परीक्षाएं जो हैं वो हो रही हैं, है ना, तो अंतिम समय है, ये परीक्षाएं तो चल ही रही हैं। आपकी परीक्षा कब है वो आप देख सकते हैं। तो अंतिम समय का नियम जो है वो भी आपको बता देते हैं कि सोने से ठीक पहले नया टॉपिक पढ़ने के बजाय दिन भर पढ़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फॉर्मूले और नोट्स का हल्का सा रिवीजन करें। इस समय दिमाग शांत होने के कारण दोहराई गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और बेहतर तरीके से बैठ जाती है, और इससे एग्ज़ाम के समय जल्दी रिकॉल करने में भी मदद मिलती है। लगातार ऐसा करने से पढ़ाई का असर बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बेहतर होता जाता है। जब हमें कोई चीज़ जो है वो अच्छे ढंग से आ जाती है ना, तो आत्मविश्वास जो है वो अपने आप आ जाता है, और फिर हमें लगने लगता है कि हाँ, हम जो करेंगे अच्छा करेंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो कुछ बातों का आपने ये ध्यान रखना है कि पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें और बिना देखे जवाब दें। हर चैप्टर के एक पेज का शॉर्ट रिवीजन नोट बनाएं। मॉक टेस्ट की गलतियों को अलग कॉपी में लिखें और रोज़ देखें। पहले प्रश्न देखें, फिर टॉपिक पढ़ें ताकि फोकस साफ हो। तो इस तरह से अगर आप अब अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप CUET UG परीक्षा में सफल होंगे, और हम तो यही चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं अपने युवा साथियों के साथ हमेशा रहती है। जी, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन जानकारी के साथ बात कर लेते हैं अब मनोरंजन की।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
4: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
3: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
4: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
5: जी युवा दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखिए, आपको बताएं यूनेस्को के फ्री प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, ये जानकारी भी युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आपको बताते हैं कि यूनेस्को ने जो एक फ्री प्रोग्राम रखा है, तेजी से बदलती दुनिया में जहाँ सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संरचनाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, तब युवाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा सिल्क रोड्स प्रोग्राम के अंतर्गत यूथ ऑइस ऑन द सिल्क रोड्स फोटो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता युवाओं को अपनी कल्पनाशीलता, सांस्कृतिक समझ और एक समावेशी विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करती है। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, ये जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद, सहिष्णुता और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है। यूनेस्को अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से ज्ञान और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने तथा वैश्विक स्तर पर युवाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और ये प्रतियोगिता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं को अपनी कला के माध्यम से दुनिया को जोड़ने और अपनी सोच को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। इसकी थीम की बात हम करें तो इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम लिविंग हेरिटेज अलोंग द सिल्क रोड रखी गई है। प्रतिभागियों को अपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये दिखाना होगा कि किस प्रकार परंपराएं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और रीति रिवाज सिल्क रोड क्षेत्रों के साझा इतिहास को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। इसमें बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे पारंपरिक शिल्पों के साथ साथ संगीत, नृत्य, लोक कथाएं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल की जा सकती हैं। देखिए, इसके लिए आयु सीमा आपको बताएं तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दो आयु वर्गों में बांटा गया है। पहला 14 से 17 वर्ष और दूसरा 18 से 25 वर्ष। अभ्यर्थी अपनी आयु के अनुसार संबंधित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि अगर आप इस प्रतियोगिता में विजेता बनते हैं तो आपको क्या मिलेगा। इस प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को प्रोफेशनल कैमरा, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को सेमी प्रोफेशनल कैमरा तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को मानक डिजिटल कैमरा प्रदान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त लगभग 60 सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों को यूथ लेंस ऑन द सिल्क रोड नामक एक फोटो एल्बम में शामिल भी किया जाएगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का भी मौका मिल सकता है। तो देख लीजिए युवा साथियों, कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये प्रतियोगिता में। अगर आप भाग लेंगे और विजेता बनेंगे तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब आपको बता देते हैं कि आवेदन आपने करना कहाँ है। देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट unesco.org पर जाकर प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर डिटेल में आपको और जानकारी चाहिए तो unesco.org इनकी वेबसाइट पर जाकर आप ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और आवेदन करने के लिए प्रतिभागियों को दिए गए लिंक जो कि है tinyurl.com/3txbf5szy। इसको एक बार फिर सुन लीजिए, tinyurl.com/3txb5szy लिंक पर क्लिक करने के बाद पार्टिसिपेट नाउ विकल्प का चयन कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 30 जून 2026 ये निर्धारित की गई है। तो युवा दोस्तों, आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, है ना। प्रतिभागियों को तस्वीरों के जरिए दिखाना होगा कि परंपराएं और संस्कृति आज भी किस तरह से इतिहास को जीवित रख सकती है। तो ज़रूर इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए अगर आपका शौक है फोटोग्राफी करने का, और आप अगर इस तरह की फोटोग्राफी करने में दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और कोशिश कीजिए, विजेता ज़रूर बनेंगे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, तो करनी ज़रूर चाहिए। और अगर ना भी कामयाब हुए तो कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर विजेता बने तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान होगी, और अगर नहीं भी बने तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए कोशिश हमेशा हमें अपनी जारी रखनी चाहिए, और हमारी कोशिशें तो हमेशा यही रहती हैं कि हमारे युवा दोस्त हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, इन्हीं कोशिशों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब आज का ये युवमंच कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए।

अभी आप युवमंच कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान के लिए आज खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कांग्रेस पार्टी के चारों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे जो 1.5-2 साल का वक्त है, सभी जगह पैसे की स्वीकृति हो चुकी थी और हमने 3 और नगर निगम बनाए हैं। मेरा मानना है कि 16 नगर निगम में हमने जो कार्य की स्वीकृति दी थी, उस पर अभी कार्य शुरू होने हैं। 16 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लड़ाएगी।
0: दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी आज सोलन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहाँ की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश झेल रही है, वो साफ दिखता है कि दर्द क्या है। इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे। ना पानी आता है, लेकिन बिल दिल खोल कर आता। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, फिर मुकर गए।
0: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों शहरों को आधुनिक बनाने का रोड मैप तैयार किया है। अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में बच्चों व युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे।
3: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की जो हमारे सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी हमारे दोनों क्षेत्रों में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बन रहे हैं। और कल जो संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के लिए, धर्मशाला के विकास के लिए जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हर चीज का समावेश है। हर वार्ड में कोशिश रहेगी कि संगठित पार्किंग की सुविधा जो दी जाएगी, बार मेमोरियल के पास रिक्रिएशन सेंटर जो बनाया जाएगा, स्ट्रीट बेंडर्स के लिए नए बेंडिंग जोन, जो हमारे जो ताने लगाते हैं बेरोजगार, उनके लिए जो नए बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे सुनियोजित ढंग से।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि NTA ने ठोस सुधारों की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: प्रदेश में 26

0: 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की वापस लेने का आज अंतिम दिन था। राज्य में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसे पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। और दोस्तों, आज 15 मई का दिन है। आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मना रहे हैं। और देखिए ना, जब हम अभी शाम के समय घर लौटते हैं ना, चाहे हम कहीं भी काम करते हों, शाम के समय जब हम घर लौटते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, जब परिवार वालों का हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे, है ना। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं। और ये समय होता है और हमें महसूस होता है कि घर जाएंगे, अपने बच्चों की खिलखिलाती हुई शक्लें देखेंगे, अपने परिवार वालों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है बहुत ही। हाँ, जो हम कर रहे हैं हम अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, तो हमारे परिवार वाले खुश हैं, है ना। तो बस इसीलिए सब कामकाज होते हैं, हर कोई चाहता है कि हम हमारे अपने सब हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा, और यही हम भी चाहते हैं। इसलिए कुछ ऐसे ही गीत आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं।

बिल्कुल जी, हमारा परिवार ही तो हमारा संसार होता है ना। और इस संसार को चलाए रखना, बांध के रखना बहुत ही हिम्मत का काम होता है। और इसके लिए बस भाषा में मिठास होना चाहिए और कुछ इस तरह की भाषाएं होनी चाहिए जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती हैं। और वो है सबसे पहली भाषा, सकारात्मक शब्द। आपस में हमेशा हमें सकारात्मक शब्दों की ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सिर्फ माता पिता कमियां निकालें और प्रशंसा ना करें तो बच्चा कमज़ोर होने लगता है। भाई हमें इस तरह के शब्द एक दूसरे से बोलने हैं कि भाई मुझे तुम पर गर्व है, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, जैसे शब्द जो है वो आत्मविश्वास देते हैं। और अगर हम जैसे एक दूसरे की तारीफ करते हैं हमेशा कि भाई आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, अरे आज कितनी अच्छी सफाई है, घर कितना महक रहा है, मतलब इस तरह से अगर हम एक दूसरे की तारीफ करते रहे ना तो प्यार बना रहता है, मिठास बनी रहती है। और समय की बात जब हो तो एक दूसरे को समय देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम परिवार में एक दूसरे को समय देते हैं ना तभी परिवार एक रहता है, जुड़ के रहता है। अगर बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े सब मोबाइल में व्यस्त हों

0: तो भाई वो फिर अकेलेपन में ही डूब जाते हैं। बस समय देना सीखिए एक दूसरे को, बुजुर्गों से कहानियाँ सुनिए, बच्चों से बात कीजिए, रिश्ते गहरा जाएंगे। और अपने कार्यक्रम को गहराने के लिए अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्यारा सा गीत सुनते हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: एक स्वर्ग है आसमान पर और एक स्वर्ग है धरती पर, और वो स्वर्ग है हमारा अपना घर। जी हाँ, और वो घर स्वर्ग तभी बनता है जब एक दूसरे का सभी साथ देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और यही होना चाहिए हर घर परिवार में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आज हम मना रहे हैं और कुछ ऐसे ही गीत सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं। एक अंतराल, उसके बाद अगला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए समय दीजिए एक दूसरे को मोबाइल छोड़कर, और उपहार भी देना बहुत जरूरी है। अपनी भावनात्मक स्मृतियां होती हैं उपहार, सिर्फ वस्तुएं नहीं। माँ का बच्चों की पसंद का खाना बनाना, दादी का हाथों से बुना स्वेटर देना, ये भी प्रेम का प्रतीक ही तो है।

0: बिल्कुल, ये यादें ताउम्र साथ रहती हैं जो हमें अपने अपनों से मिलती है। तो बस अपने परिवार में यूं ही मिठास बढ़ाए रखिए, बस प्यार जताइए, क्योंकि भारतीय परिवारों में प्रेम जिम्मेदारियों के रूप में दिखता है। पिता का मेहनत करना, बहन का भाई के लिए चिंता करना, ये सब प्रेम जताने के तरीके हैं। और बच्चों के लिए माँ की गोद, पिता का सिर पर हाथ फेरना, दादा दादी का गले लगाना भावनात्मक असर छोड़ता है, और ये स्पर्श सुरक्षा और अपनत्व का एहसास होता है। तो बस ये एहसास बना रहे हर परिवार में, यही हम चाहते हैं जी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम मना रहे हैं, और बस इस दिन हमने यही कामना करनी है कि हर परिवार में प्यार, मिठास, विश्वास बना रहे। और आज ही क्यों, हर दिन यही प्रयास होने चाहिए। इन्हीं प्रयासों से ही तो हम अपने परिवारों को एक बना पाएंगे। परिवारों को एक भी बना पाएंगे, और जब परिवार में मिठास होती है, प्यार होती है ना, तो कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है हर शाम को सुकून से हम अपने घर लौटे, सारी थकान हट जाती है। तो उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से भी आपकी थकान जरूर दूर हुई होगी। तो अब आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है खेती बाड़ी कार्यक्रम।
1: ले ओ भाई सिमरो ना, दो रेट के खरे निकली गई है ना, तू उतरे ना ता हुन एड़ा ना पे आऊं ता गई पाई थक्की, मैं ता जाना हुन बठी कनेड़ा, दो कड़ियां तू भी बठी है ना, फेरी चखता है रेट को अंकन, फेरी चल लाए।
2: पर दे है ना कि अजकल हरा पट्ठा हुन गा तो आंदी कुती दिखने जो मिलना, ए ता दिख तू तो हरे लगाए पौधे है ना,
1: बरखा भी होंदियां रही है ना, ता एड़ा पे इना रुटने रट्टिया भी कने बीड़ा भी ना पई खरा जे है लूंगो हो गिरी,
2: ता ही गलांदे पे दिख लगाए हुन टाइमे दे रुख बूटे ता आपी जो फायदा होंदा, तू दो घड़ियां होना ना।
1: हां बैठी लेंदे हैं ना, पर मुझे बैठने जो गलाया, गलाने बोलने जो थोड़ी ना बोलिया ही है, पे तू गलाना बोलना ही बंद कर दी दे।
2: मुझे गला बोला दी तै ही, और मैं ता दिखा दी अपने खेत रही।
1: अच्छा घड़ियां सोचन च पई,
2: ओ सोचना तो क्या, पर दे दिखा दी पे उने मलस भी यहां जो गोआ सटना पौना खेतरा च मैल।
1: हां
2: पर जे बड़ियां धुप्पा होईयां कने सटी भी दित्ते सारियां डल्ला खेतरा च, ता दे नी ओ पे सही सुकी आओ।
1: नहीं नहीं ताली मत सटदी ना, दिक्कत इयां जे खेतरा बाणे दा टाइम आ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन। कार्यक्रम है भक्ति संगीत। भजन सुनने से पहले एक अंतराल।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जहाँ है
1: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
1: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जी, ये भजन हमने लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इस भजन में आवाजें आप सुनेंगे सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की। समीर का लिखा ये भजन है, अनु मलिक का संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित

0: निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये भजन। मीरा का मोहन फिल्म से हमने इसको लिया है। अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों की आवाजें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: जी रौन का ग्राइंडिया भी आप सुनेंगे और भक्ति संगीत कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।
0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका ग्राइंडियां।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कार्यक्रम रौनका ग्राइंडी लेके जेन से हाजिर होगियां सिमरो कने
4: रोशनी।
3: तो इस कार्यक्रम बीच भी ढेर सारा स्वागत कर देने सबनी कार्यक्रम जो सुनने वाले दा।
4: बिल्कुल जी कने तिंगे जे तो जो पता ही है कि कार्यक्रम में रौनका ग्राइंडियां, तो इस कार्यक्रम दे बीच आहे गल्ला बातां सौगी कने बांके बांके लोक गीतां सौगी लगांदे ढेर सारियां रौनका कने कर दे किसी न किसी विषय पर गलबात।
3: जी तो दिखा इस कार्यक्रम बीच ज्यादातर गलबात अहां दी जी असां अहां दे ग्रां ने संबंधित, अहां दे समाज ने संबंधित, कने अहां दे नेड़े तेड़े क्या क्या हो दा इस दे बारे जी से रहंदी।
4: कने अजकल अहें सजे अपने नेड़े तेड़े दिखा रहे सहे बढ़दे हुए अपराध दे मामले, कने अहें दिखदे हैं कि अजकल अहारे आसे पासे एड़ी घटनाएं घटा दी हैं सजे अहां सारे जो सोचने पर विचार विमर्श करने पर जी असें मजबूर कर दी हैं, कने किती ना किती अहें इन्हां घटना ते जी असें डरदे भी है।
3: बिल्कुल कने दिखा ओ अदा ही ऐसा कुछ कि यहाँ तो वहाँ जी इनसे डरा दे, क्योंकि यहाँ दे दिखा बच्चे छोटे स्कूल ने जा दे, फिर हर कोई अपने अपने रोजमर्रा दे कम्मा कार पर जी ऐसा बाहर जा दा, कने बाहर जाना जरूरी भी है दिया तनी है कि यहाँ अंदर ही रहेंगे हर कड़ी कर जी है ना। ये जड़े यहाँ गल्ला बातें सुना दे, ये जड़े अपराध यहाँ दिखा दे ना, इस ते जी ऐसा हर कोई जी ऐसा एकदम डरी आदा।
4: दिख दे है ना कि आज हमारे पास जी है से नशे रा एक एड़ा जाल जी ऐसे बुनी चुकी रही है या पीते थे अगर कोई निकलना भी चाहता ता भी नहीं निकल ही पाता ही है या पर ए ताई संभव हो सकदा अगर अहें सारे जैसे एकजुट होन ताहे नशे के खिलाफ जैसे एक लड़ाई लड़ी सकदे हैं। इसके अलावा अहें दिखदे हैं पे हमारे आसे पासे जैसे चोरी दे मामले बड़े ज्यादा होते हैं।
3: हाँ मतलब कोई भी अपने आप पर जो जैसे सुरक्षित महसूस नहीं करा दा, क्योंकि कल यहाँ कुती जाना हुआ था ता भी एक मन च डर दे है ना कि पता नहीं अगर यहाँ चली आएंगे तो क्या होना, तो यह चीज यहाँ की बचना है इस बारे च भी यहाँ तुह जो जैसे एकदम सतर्क रहना चाहता।
4: सिमरो दिखना पहले क्या होंगे है ना ग्रां चीजें घर दिख नेड़े नेड़े होंगे हैं, तो अगर कोई एक परिवार जी हसे कुती जानदा चाहे मन ले रिश्तेदारी च गया या घूमने फिरने गए या तो से अपने घर जो खुले छड़ने पे चली जाता था पड़ोसी जो गलाए ने
3: तो विश्वास था, पर उन जी ऐसा है टाइम दे लगा था पे कुती ना कुती जी से लुप्त हो चुके हैं।
4: बिल्कुल कि नहीं दिखा एक विश्वास जैसे धीरे धीरे कहाँ कटा दिया है, क्योंकि यहाँ आसे पास जैसे एड़ी घटनाएं सुनने जो मिलती है ना भी हाँ जी फलाने करे कुती चोरी होगी आई या फिर जी ऐसा
3: कोई परिवार जी कभी घूमना गए हो या कुछ तो कुछ ना कुछ घर जी एड़ी जी घटना सुनने जो मिल लादी।
4: बिल्कुल तो उस वजह ते जी है ये चीजा अहां जो सोचने पर समझने पर जे है मजबूर कर दी है ना कुती ना कुती जैसे कमी कुती रह दी है क्या अहां रह की दुए जे ऊपर भरोसा करना जे ऐसा गलत आ, तो ये गल्ला जे से अहां जो सोचने पर मजबूर कर दी पे अहें जे सतर्क रहन सावधान रहन, क्योंकि जितने अहें सतर्क रहेंगे उतने ही अहें जे ऐसे सुरक्षित भी रहना ही है।
3: बिल्कुल कने अहां जो लगदा कोई भी एड़ी जी अहां दे अखी अगे कुछ ऐसी गलबात हो दी तो एकदम अहां जो जी ऐसे जानकारी गा देना चाहिए।
4: बिल्कुल कहीं दिखा भाई अजकल अखे पखे जैसे गहने पहनी ने जाने का भी रुआज जैसे नहीं रह जाइए या क्योंकि हाथा पाई हो जाती आई या फिर किसी तरीके ने जैसे लूट पाट हो दी आई, तो यह सारिया गल्ला जी असें अहां जो सोचने पौनी अहां जो जी है कि दूजे ने विचार विमर्श करने पौना ताकि अहें इन्हों कुरीतियां ते जी असें बची सकन, कने अगर इन्हों कुरीतियां ते बच के ना ता ही अहां दे ग्रां दे विच जैसे रौनक लगनी आ, कने अहां दे कार्यक्रम दे विच जी असें अहें रौनक लगांदे छाल छाल लोक गीतां सौगी, तो आओ सारे मिलीने सुनदे मिठड़ा जिया लोक गीत।

0: रौन का ग्राई दिया। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
5: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
4: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
5: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
6: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:43 हुए हैं। कुछ ही देर में यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करेंगे।

0: वही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों में अपनी अपनी जीत के किए दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 21 जून को फिर से होगी नीट परीक्षा, 14 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। और आईपी

0: में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच कल धर्मशाला में होगा अहम मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान के लिए आज खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि सोलन शहर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कांग्रेस पार्टी के चारों नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और हमारे जो 1.5-2 साल का वक्त है, सभी जगह पैसे की स्वीकृति हो चुकी थी और हमने 3 और नगर निगम बनाए हैं। मेरा मानना है कि 16 नगर निगम में हमने जो कार्य की स्वीकृति दी थी, उस पर अभी कार्य शुरू होने हैं। 16 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व लड़ाएगी।
0: दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी आज सोलन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी।
2: कांग्रेस क्यों घबराई है? 26 में अंगड़ाई है, 27 में कांग्रेस की विदाई है। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 3 सालों से यहाँ की जनता जो राज्य की सरकार की नाकामियों का दंश झेल रही है, वो साफ दिखता है कि दर्द क्या है। इन्होंने कहा था कि 100 रुपए बिल देंगे, पानी 24 घंटे देंगे। ना पानी आता है, लेकिन बिल दिल खोल कर आता है। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। आज केवल एक मौका है जनता के पास कि सोई हुई सरकार को जगाना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी फिर मुकर गए।
0: राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों शहरों को आधुनिक बनाने का रोड मैप तैयार किया है। अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में बच्चों व युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे।
3: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की जो हमारे सर्वे की रिपोर्ट है, उसमें भी हमारे दोनों क्षेत्रों में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के बन रहे हैं। और कल जो संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास के लिए, धर्मशाला के विकास के लिए जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हर चीज का समावेश है। हर वार्ड में कोशिश रहेगी कि संगठित पार्किंग की सुविधा जो दी जाएगी, बार मेमोरियल के पास रिक्रिएशन सेंटर जो बनाया जाएगा, स्ट्रीट बेंडर्स के लिए नए बेंडिंग जोन, जो हमारे जो ताने लगाते हैं बेरोजगार, उनके लिए जो नए बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे सुनियोजित ढंग से।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नाहन नगर परिषद के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में धुआं रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने आज नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि NTA ने ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: ताजा समाचारों के लिए

0: आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों को वापस लेने का आज अंतिम दिन था। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं। लाहौल स्पीति जिले में 17 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। इनमें से 8 पंचायतें लाहौल और 9 पंचायतें स्पीति घाटी में हैं। जिले में 147 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी के बाद अब जिले में जिला परिषद के लिए 22, पंचायत समिति के लिए 39, प्रधान के लिए 80 और उप प्रधान पद के लिए 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोलन जिले की काहला और भोजपुर पंचायतें भी निर्विरोध चुनी गई हैं। काहला पंचायत में प्रधान राजेश ठाकुर सहित उप प्रधान और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी दिन छुट्टी मिलेगी जब उनकी पंचायत और संबंधित क्षेत्र में मतदान होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ये अवकाश मान्य होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी की टीम आज दोपहर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। पंजाब किंग्स की टीम को 10 और 14 मई को धर्मशाला में अपने दोनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स की टीम को ये मैच जीतना जरूरी है। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है।
1: एजीएम में जो हमारा 10% वार्षिक बढ़ोतरी होती थी, वो इन्होंने जो है इस बार बिल्कुल खत्म की। हालांकि जो है एजीएम में ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी इन्होंने जो अपने आप हमारा 10% खत्म किया, क्योंकि इन्होंने जो आज जनता के ऊपर जो है 10% वृद्धि लागू कर दी है। अगर आपने जनता से लेने हैं तो हमें भी जो है 10% वृद्धि चाहिए। पहली बात यह है कि हमारा जो लेबर कोड में जो है 3 सालों से जो है अभी केस चला हुआ है। कमिश्नर साहब एक बार भी जो 3 सालों में जो हमारे से बातचीत करने नहीं आए हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को होगा मतदान। खुलेआम चुनाव प्रचार थमा, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। कांग्रेस और भाजपा ने चुनावों में अपनी अपनी जीत के किए दावे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 21 जून को फिर से होगी नीट परीक्षा, 14 जून तक उपलब्ध कराए जाएंगे प्रवेश कार्ड। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह। लाहौल स्पीति जिले की 17 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित। और आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच 17 मई को धर्मशाला में होगा अहम मुकाबला, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत का आनंद आज आप उठाएंगे। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं उस्ताद अमजद अली खां को। जी हाँ, राग चंद्रकौंस में होगा इनकी आवाज़, और तबले पर थिरकत करेंगे राशिद मुस्तफ़ा थिरकवा। तो शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज उस्ताद अमजद अली खां को ज़रूर सुनिएगा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं। और दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहें कि आज रात्रि 10:30 पर हर रोज की तरह आप सुनेंगे चांदनी रातें कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं।

0: आज इस कार्यक्रम में सुनिए वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका बुखार।
1: ले ले, नाक बंद करके एकदम पी जा। अरे दवा तो कड़वी हो ही है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं।
2: हाँ माँ।
1: ले बेटा सड़ाक से पी जा। अरे शाबाश, पीजा पीजा।
2: ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भैया? नहीं, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था।

0: ना मैं और ना ही कभी भविष्य में होगा, तो फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो।
1: सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार हो तेरे दुश्मनों को।
0: हाँ।
1: पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे, देखियो एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाए हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थू खैरे की दवा थोड़ी, ले बेटा पी जा।
0: अब चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो माँ, मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो, एक बूंद जिस्म का एक एक रुआ खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं।
1: हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
0: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस काढ़े से, और तुम, और फिर चाहे ये रत्ती भर ही क्यों ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना।
1: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखियो 3 दिन से डॉक्टर बैदों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान।
0: क्या मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
2: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, बाई दीवे मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
0: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
2: वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है
0: और मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, 1000 उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ और एक सड़मुसड़ से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
2: लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके।
1: हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
0: मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
2: देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई दीदी तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। भाई दीदी हम मानते हैं कि दवा कड़वी है, लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पीना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर बाई दीवे फुंसी पैदा हो गई।
1: और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे
0: जी।
2: और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। बाई दीवे अशोक तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
0: नहीं, नहीं, नहीं,
2: भाई तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ
1: जी,
2: ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो।
1: अच्छा।
2: वो खुद पिएगा काढ़ा। भाई हाँ तो बेटा देखो हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा पी जाओ। हाँ हाँ एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
1: हाय हाय तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
0: देखो
1: जाओ पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
2: मैं कहता हूँ अशोक की माँ ये।
1: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे बेटे अशोक।
0: माँ माँ एक सांस में 2 सेर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर
2: एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकते।
0: बाबूजी ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है।
2: कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे।
0: भगवान
1: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ। अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था,
2: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया तो
1: कहीं जाके मेरा बुखार उतरा। हाय वैद्य जी भगवान उन्हें 100 बरस की उम्र।
2: क्या भक्ति होगी, वैद्य जी पहले 102 साल के हैं।
1: है?
2: अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं
1: जी।
2: तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काला डाल देना।
1: नहीं जी हाथ मैं पकड़ती हूँ।
2: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा।
0: आप लोग चिंता ना करें, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा
2: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
0: बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते? ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले। पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काढ़ा दे दिया।
2: बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई दीवे मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
0: जी।
2: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में, लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस सख्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
0: नहीं
2: हाँ अशोक की माँ
1: जी।

0: अच्छा तो देखो, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम।
1: चलो मैं दवा उड़े लूंगी।
2: प्रभु
1: जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
0: लाओ दे दो। है? मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो।
1: क्या बकते हो जी?
2: बहुत अच्छे।
1: अरे अभी अभी तो मैं कढ़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ। मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
0: अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है, तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
1: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू? अरे मुझे फिर भूख लग रही है, और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
2: फिर भी थर्मामीटर लगाने में क्या हर्ज है माँ? हम बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
1: ओफो।
0: देखो बेटे, तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
2: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
0: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
2: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
0: अच्छा तो बच्चे, अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
2: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
0: हाँ हाँ बेटे जरूर, कहो कहो।
2: बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए।
0: शाबाश बेटा शाबाश। एक सेकंड ठहरो।
2: क्यों?
0: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
2: हाँ जी।
0: लाना जी जरा देना इधर थर्मामीटर।
1: ये लो।
0: देखा। मैं पहले क्या कहता था, अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है, 100 डिग्री, ठीक अशोक की तरह।
2: क्या मालूम बाबूजी माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
0: हो सकता है,
2: हो सकता है।
1: मैं कहती हूँ
0: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत है।
2: हाँ माँ।
0: संतो, ओ संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? क्यों जी, कहाँ चले गए थे तुम?
3: डाकघर गया था बाबूजी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो, जल्दी बुखार है और ये थर्मामीटर धो लो।
1: क्या मुसीबत है।
2: बाबूजी अब इस काढ़े की 2 खुराक बना लीजिए, एक खुराक माँ को भी तो चाहिए।
0: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे ये लो अशोक की माँ, लो पहले तुम पी जाओ दवा,
2: जल्दी
0: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
1: अरे मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा है।
0: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है?
3: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
0: अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
2: हाँ तुम
0: पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाए।
1: अजी नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा, वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
0: देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा, दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
2: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
0: जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालता हूँ।
2: जी
0: हाँ, इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
2: जी
0: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो खोलो मुंह खोलो।
2: ठहरी बाबूजी।
0: क्या बात है बेटे?
2: बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो।
0: अरे पगले, धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फ खाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम?
1: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
2: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
1: बेटा अशोक, बैजी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
2: माँ भूत नहीं, वैजी छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
1: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
2: तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
1: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
2: लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह।
1: सच? संतो
2: संतो
1: संतो, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे,
2: एक और,
1: और एक खाली प्याला भी लेते आना।
2: जल्दी
3: जी अशोक।
1: हाँ अशोक।
2: हाँ जी माँ।
1: अब इस दवा के 3 हिस्से कर दे।
2: जी अभी करता हूँ।
1: एक खुराक तेरे बाबूजी पिएंगे।
0: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं।
2: कौन जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
3: बिस्तर लगा दिया है बीबी जी।
1: अच्छा,
3: अरे ये लीजिए प्याले।
1: अशोक बेटा सबसे पहले अपने बाबूजी को एक खुराक दे।
2: सबसे पहले।
1: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी।
0: आज बुखार के

0: आप भी नब्ज दिखाइए।
1: मैं बिल्कुल चंगा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए फिर भी मुझे 100 बुखार है।
0: आप भी लाइए अपनी नब्ज।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब, आप खामोश हैं।
0: कोई खास बात नहीं कृपा शंकर जी, मैं सोच रहा हूं मैं यहां बेकार ही आया, आपका थर्मामीटर गलत है। जी हाँ, इसको लाख बार झटकिए लेकिन इसका पारा ना तो 100 डिग्री से आगे बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है।

बुखार। अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आजा नचले फिल्म का नाम है। जयदीप साहनी ने इसे लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक,

चित्रलोक कार्यक्रम में इन अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्म ब्रदर्स से ये गीत, सोनू निगम, नीति मोहन की आवाजें। अजय अतुल का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से।

मेट्रो इन दिनों से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, डियर जिंदगी से ये गीत, जसलीन रॉयल का आवाज। कौसर मुनीर ने इसे लिखा।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने RJKR मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में UAE में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
4: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 exaflop सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का UAE का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
6: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य

0: और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
6: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is vision mein antarrashtriya

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माथुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए, और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

0: सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।
1: देखा देखी

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यह कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध, आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और दोस्तों आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन इस समय हम आपका मनोरंजन शास्त्रीय संगीत के साथ करते हैं। तो रात्रि के 10 बज चुके हैं और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन राग चंद्रकौंस में। तबले पर संगत कर रहे हैं राशिद मुस्तफा थिरकवा। आइए सुनते हैं उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन।

जी, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। आज आपने सुना उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन राग चंद्रकौंस में। तबले पर संगत कर रहे थे राशिद मुस्तफा थिरकवा।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है चांदनी रातें कार्यक्रम लेकर।

चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आ बैठेंगे बातें करेंगे, पर मेरा चांद तो तुम ही हो। तुम ही से हैं बातें, तुम ही से है रिश्ता, और तुम ही से सारे नाते। बस इतना प्यार हो कि दूर कभी ना जाएं, दिल का हाल सुना।

कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, और एक हम हैं जो हाले दिल यूं ही बयां कर देते हैं। पर जब आप सामने आते हो तो दिल का हाल कुछ ऐसा होता है, ना बोलते बनता है ना चुप रहा जाता है।

ना कभी बदले ये लम्हा, ना बदले ये ख्वाहिश हमारी, हम दोनों ऐसे ही रहें एक दूजे के, जैसे मैं चाहत और तुम जिंदगी हमारी। आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

प्यार में एक धड़कन दो दिल हो जाते हैं, प्यार में दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। हमेशा उसी की बातें, उसी का ख्याल, क्योंकि जनाब प्यार तो होता है प्यार।

जी, तो ये प्यार आपकी ज़िंदगी में हमेशा यूं ही बरकरार रहे, इन्हीं उम्मीदों के साथ अब आज का ये चांदनी रातें कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।